0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं, जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, सप्ताहांत का दिन है, लेकिन आज इस सप्ताहांत पर एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात भी करते चलेंगे। विषय है रक्तदान। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन कुछ और जानकारी भी आपको देते चलेंगे रक्तदान के बारे में, क्योंकि कल यानी रविवार 14 जून का दिन समर्पित है रक्तदान के लिए। सप्ताहांत के दिन है तो बॉलीवुड समाचार भी कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे, और आज जो गाने हैं वो कुछ 60 के दशक के गाने हैं। इसके अलावा आप जीत सकेंगे मेलबर्न में होने वाले नाटक के डबल पास भी। लेकिन अभी सबसे पहले न्यूज फ्लैश। नमस्कार, शनिवार 13 जून के लिए यह है न्यूज फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी का कहना है कि ईरान और अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी लड़ाई खत्म करने के लिए एक शुरुआती समझौते के शब्दों पर सहमत हो गए हैं। उस डील में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की शर्तें शामिल होंगी। मंत्री ने संकेत दिया कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी शर्तों पर बातचीत होगी, जिसे शुरुआती समझौते पर पहुंचने के 60 दिनों के अंदर फाइनल कर दिया जाएगा। सिडनी के कुजी बीच पर शार्क के हमले के बाद एक महिला जीवन और मौत से लड़ रही है। एक तैराक को काटने की खबर मिलने के बाद आज शनिवार सुबह 11 बजे के कुछ देर बाद इमरजेंसी सर्विस को बुलाया गया। आसपास खड़े लोगों ने महिला को पानी से निकाला और पुलिस और पैरामेडिक्स के आने से पहले फर्स्ट एड शुरू किया। बाद में एयरलिफ्ट करके उसे अस्पताल ले जाया गया। महिला, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास बताई जा रही है, उसको हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं। सोकुरूज कल वैंकूवर में तुर्की के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप डी में एक मजबूत शुरुआत कर नॉकआउट में जगह बनाना पक्का कर रहा है। तुर्की को एक खतरनाक विरोधी माना जा रहा है, लेकिन सोकुरूज का कहना है कि वो अपने खेल पर केंद्रित हैं। कोच टोनी पॉफिक का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड स्टेज पर अपनी पहचान बनाना चाहता है। एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए हैं। जब उनकी कंपनी स्पेसएक्स के शेयर स्टॉक मार्केट में पहली बार आए तो उनके शेयर्स में तेजी आई। लिस्टिंग के बाद कंपनी की वैल्यू 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गई, जिससे मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। उनकी अधिकतर दौलत स्पेसएक्स और इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला से उनकी होल्डिंग से जुड़ी।

0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: में पांच महिला कैडेट भारतीय वायुसेना में अधिकारी के तौर पर कमीशन होंगी। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। न्यूज फ्लैश के बाद आइए अब बात कर रही हूं रक्तदान की। ये शब्द अपरिचित नहीं है। किसी न किसी को कभी परिवार में या आपके जान पहचान में, किसी मित्र के परिवार में कभी ये बात तो हुई होगी कि खून चढ़ाना है, रक्तदान चाहिए। और ये एक तरह से जीवन और मृत्यु के बीच की वो घड़ी बन जाता है जहां पर हम कितने ही चिंतित हो जाते हैं। और फिर सबका खून सबको तो नहीं दिया जा सकता, उसके लिए बहुत सारा आपको उसको मैचिंग करनी पड़ती है, कंपैटिबल ब्लड को ढूंढना पड़ता है। अब जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया की आबादी अलग अलग तरह की होती जा रही है, तो इस तरह की जो मांग है वो भी अलग अलग तरह से हो रही है। कह सकते हैं कि देश का जो ब्लड प्रोफाइल है वो भी बदल रहा है। तो ऐसे में रक्तदान कितना महत्वपूर्ण है उसके ऊपर हम सबको सोचना भी चाहिए। तो इसी विषय पर सुनिए ये रिपोर्ट। जिन परिवारों को खून चढ़ाने पर निर्भर रहना पड़ता है, उनके लिए डोनेट किया गया खून जिंदगी और मौत का फर्क हो सकता है। दूसरों के लिए डोनेट करने का फैसला कल्चर, अनुभव और वो सिस्टम को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं इस पर निर्भर करता है। SBS हिंदी पर मैं हूं अनीता बरार। लाइफ ब्लड का कहना है कि देश भर में डिमांड को पूरा करने के लिए उसे हर हफ्ते लगभग 3000 ब्लड डोनेशन की आवश्यकता है। लाइफ ब्लड अधिक से अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोगों से रक्तदान करने की अपील कर रहा है और चेतावनी दे रहा है कि आवश्यकता लगातार बनी रहती है और नियमित डोनर के बिना इसे पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी के लिए किसी बीमारी के कारण डोनेट किया गया खून कभी कभार मिलने वाला इलाज नहीं है। ये जीवन का एक लगातार चलने वाला हिस्सा है। पर्थ में सेवा ऑस्ट्रेलिया से जुड़े रवि मरियप्पा नियमित रूप से रक्तदान और प्लाज्मा दान करते हैं और वो अपना अनुभव साझा करते हैं।
2: जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो भी ब्लड जो हमारा बॉडी में है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। अगर वही वेस्ट होने के बदले हम कुछ किसी और को मदद कर सकते हैं, उसका जो लाइफ जो बनता है, जो रेड क्रॉस बोलते हैं कि हर एक आदमी जब वो ब्लड डोनेट करता है वो 3 लोगों का लाइफ सेव करते हैं।
1: एडिलेड की डोनर इंदु धनसेकर के लिए खून देने की अहमियत तब स्पष्ट हुई जब वो भारत में बड़ी हो रही थी। वो कहती है कि वहाँ परिवारों से अक्सर उम्मीद की जाती है कि इलाज शुरू होने से पहले वो खुद ही डोनर ढूंढ लें। टीनेजर के तौर पर एक अर्जेंट अपील का जवाब देने के बाद उन्होंने खुद जाना कि डोनेशन से कितना अंतर पड़ सकता है।
3: Oh, absolutely, because just it was not just giving up my time and donating, it was more about giving someone hope and for someone to actually live again. So it was very personal for me.
1: और अब वो दूसरों को भी ऐसा करने के लिए बढ़ावा देती हैं। हालांकि अधिकतर लोग AB और O जैसे ब्लड ग्रुप से तो परिचित हैं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो इस बात पर असर डाल सकती है कि ट्रांसफ्यूजन कंपैटिबल है या नहीं। इसी वजह से लाइफ ब्लड का कहना है कि उसे एक ऐसे डोनर पॉपुलेशन की आवश्यकता है जो आधुनिक ऑस्ट्रेलिया की विविधता को दिखाए। लाइफ ब्लड सीनियर

0: रिसर्च फेलो डॉक्टर रैना हिरानी ने एक अध्ययन किया है कि देश का ब्लड प्रोफाइल बदल रहा है.
1: So what we found in the research was that Australia is becoming more positive overall, and that group B and AB groups are becoming more common in our community. And these are the blood groups that are found more commonly in parts of Asia, India, Pakistan. So that's probably why we're seeing a change in the blood prevalence within Australian communities.
0: और रवि मरियप्पा का कहना है,
2: जो बोन मैरो जब चाहिए वो वही डेमोग्राफी से होना चाहिए. For example, जब if a person वो जो आदमी दिल्ली के हो या मुंबई के हो, वो अगर किसी एलिमेंट के डिजीज के है, लाइक फॉर एग्जांपल कैंसर, और उनको बोन मैरो चाहिए, बिकॉज बोन मैरो इज द वन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ब्लड, सिर्फ वो डेमोग्राफिक पर्सन ही दे सकता है, क्योंकि वो जो डीएनए है वो मैच होना चाहिए.
0: पैथोलॉजी सर्विसेज के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जेम्स डेली का कहना है कि हाल के बदलावों से अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोग ब्लड डोनेट करने के लायक हो गए हैं.
3: Earlier this year in April, we moved to a gender neutral assessment questionnaire so that the questions answered by donors are the same regardless of their gender. And that has meant that men who are in gay or bisexual long term monogamous relationships are able eligible to donate red cells and platelets.
0: रक्तदान यानी कोई आर्थिक दबाव भी नहीं.
2: जो हमारा जो खून जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसको वेस्ट करने के बदले हम किसी को जान दे सकते हैं. वो तीन जान वो सेव कर सकते हैं हमारा एक डोनेशन से. इट एक्चुअली सेव्स मेनी लाइव्स इफ यू आर हेल्थी एंड इफ यू कैन. यू नो पीपल शुड कम मोर फॉरवर्ड. कोई लोग यू नो पैसा नहीं दे सकते. अगर यू नो लाइक डोनेशन ऑफ मनी इज यू नो इज अ एफर्ट, बट ब्लड डोनेशन एंड प्लाज्मा डोनेशन के लिए उतना एफर्ट नहीं चाहिए. सिर्फ आपको यू नो यू नीड टू बी प्रेजेंट देयर एंड कंट्रीब्यूट टू यू नो इट्स अ नोबल कॉज.
0: SBS न्यूज के लिए हना हॉटसन और SBS हिंदी के लिए इस अंश को तैयार किया अनीता बरार ने. तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे कि रक्तदान कितना महत्वपूर्ण है. आपका क्या अनुभव है? आपने जाना कि कुछ भारतीय मूल के लोग इस दिशा में बहुत निरंतर तौर पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. आपने क्या किया है? आपने क्या कभी रक्तदान दिया है या आपके जान पहचान वालों ने कभी दिया है? और अब आप क्या सोच रहे हैं? मुझे अवश्य लिखें. 0439799767 पर मिलती हूँ इस अंतराल के बाद.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: रात को खाना भूल गए? देर रात किराने का सामान चाहिए? रात 10 बजे कुछ मीठा हो जाए? लकेम्बा में हेल्डन स्ट्रीट दिन रात खुली रहती है. गर्मा गर्म लेबनानी कबाब, मोरक्को के जायकेदार टजीन, बांग्लादेशी मिठाइयाँ और देर रात ताजे किराने के सामान का मजा लें. अंधेरा होने के बाद दुनिया भर के खाने का एक उत्सव, सुरक्षित, मजेदार और विविधताओं से भरा. यहाँ हमेशा कुछ न कुछ हो रहा होता है. अपना अगला देर रात का खाना wih.city/lakemba पर पाएं. लकेम्बा, एक अलग ही दुनिया के लिए आपका पासपोर्ट.
6: SBS Audio.
7: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं.
8: यही चाहता दिया. चुनते हाल में.
9: SBS Chill.
10: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
13: Far from the partisan politics.
14: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं. SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
9: sbs.com.au/audio.
0: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार. श्रोताओं, आपको बताती चलूं कि आज भी आप जीत सकते हैं मेलबर्न में 20 जून को होने वाले

नाट्य दर्पण द्वारा प्रस्तुति जो है उनकी शादी सिलेबस और दूसरा नाटक है दिस टाइम यू डिसाइड। ये दोनों ही नाटक होंगे 20 जून को चैंडलर थिएटर मेलबर्न में। तो आप जीत सकते हैं इसके डबल पास। आपने क्या करना है, बस अपना नाम लिखिए, अपना ईमेल भेजिए और साथ में कुछ कारण बताइए कि आप नाटक क्यों देखना चाहते हैं।

0: You are listening to SBS.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: बल्कि संगीत सुनाई देता है. अब इससे बहुत सारी आशा और उम्मीदें तो जुड़ी जाती हैं. आइए इस रिपोर्ट को सुनते हैं जिसे हमें भेजा है फैसल फरीद ने. मुझे लगता है शायद एक बार पहले भी आपने इसी तरह की कुछ रिपोर्ट सुनी थी. आज उसकी याद ताजा करते हैं.
3: कभी न कभी बस में यात्रा सभी ने की होगी, लेकिन मुंबई की सड़कों पर एक अलग तरह की बस दौड़ती है. इस बस का इंतजार झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सैकड़ों बच्चे बेसब्री से करते हैं. इस बस में यात्रियों का शोर नहीं बल्कि मधुर संगीत की जीवंत ध्वनियां निकलती हैं. इस छनकदार बस से इन बच्चों की बहुत सी आशा उम्मीद जुड़ी हुई है. ये बस द साउंड स्पेस ऑन व्हील्स द्वारा चलाई जाती है. दो बहनें विशाला और कामाक्षी द्वारा सोची गई और बनाई गई ये बस वंचित बच्चों के लिए ये सीधे संगीत शिक्षा लाने की एक अनूठी पहल है. इस नवीन बस को पूरी तरह से सुसज्जित संगीत स्वर्ग में बदल दिया गया है. वायलिन, पियानो, गिटार और यहाँ तक डीजे जैसे वाद्य यंत्रों से भरा हुआ ये काफिला ये युवा दिमागों को संगीत की दुनिया का पता लगाने के लिए एक अनोखा वातावरण प्रदान करता है. विशाला और कामाक्षी के द्वारा ये शुरुआत की गई है. इसमें संगीत शिक्षक उभरते संगीतकारों को उनकी संगीत यात्रा में मार्गदर्शन देते हैं, उनको सिखाते हैं. वो इन वंचित बच्चों को उनकी संगीत संबंधी प्राथमिकताओं का पता लगाने में मदद करते हैं कि किस बच्चे में कौन सी प्रतिभा छुपी हुई है, और फिर उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए व्यक्तिगत दिशा निर्देश देते हैं. विशाला के अनुसार जो बच्चे उन तक नहीं पहुंच सकते थे या जिनके लिए संगीत की शिक्षा लेना नामुमकिन सा कार्य है, उनके लिए ये बस उनके पास पहुंच रही है. वो गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जाहिर सी बात है उनके पास शिक्षा का ही अभाव है, तो संगीत शिक्षा के बारे में वो कहां तक सोचेंगे. लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक ये बात छुपी रहती है कि जब भी संगीत बजते देखते हैं तो उनके पैर थिरकने लगते हैं. बात ये भी है कि सबके जीवन में कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत संगीत होता ही है. अब ये बस इन बच्चों के दरवाजे उन तक पहुंच जाती है. ये इस बात को भी दिखाता है कि संगीत को आप रोक नहीं सकते हैं अगर आप उसको सही समय पर बच्चों

0: su SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: मतलब इट वाज वेरी स्पेशल, बहुत ज्यादा स्पेशल अभिनीत थी, क्योंकि हम हर चीज म्यूजिकली करते थे, जैसे टाइम टेबल हो या खाना, साथ में बैठे गाकर म्यूजिकली करते थे. और हमें जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट दे सकता है, एंड आई थिंक इसीलिए हमने ये सोचा कैसे म्यूजिक पहुंचा सकते हैं, ये हमारा एक रहा है.
3: बहुत साल पहले शुरू हुई ये बस, इसने संगीत की शिक्षा को गरीब बच्चों तक पहुंचाने में बहुत मदद की है. ये दोनों बहनें पारंपरिक संगीत सीखने की जो एक ढांचा बना हुआ है कि जिसमें संगीत स्कूल, संगीत गुरु के पास बच्चे जाते हैं, उस ढांचे से अलग हट करके काम कर रही हैं. इसके लिए ये इन बच्चों तक पहुंच रही हैं, इस संगीत को मजेदार भी बना रही हैं, ये वही सिखाती हैं जो बच्चे सीखना चाहते हैं या उनके अंदर उस चीज के बारे में थोड़ी बहुत प्रतिभा है. लेकिन इस बस में क्या क्या होता है, ये बस कैसे काम करती है, कामाक्षी बताती हैं.
2: इन म्यूजिकल बस जो है ये हर एक अलग अलग जगह अलग बस्ती पे जाके ना बच्चों को म्यूजिक सिखाता है. बट ये सिर्फ म्यूजिक सिखाने के लिए नहीं है. म्यूजिक द्वारा ये बच्चे और क्या क्या सीख सकते हैं, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, बेसिक एटिकेट्स हो, सोशल स्किल्स हो, ये सारी चीजें बच्चों को

0: su SBS.
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
3: Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: और कामाक्षी की साउंड स्पेस ऑन व्हील्स मुंबई के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करती है. प्रत्येक स्थान पर सप्ताह भर में एक बार उभरते हुए संगीतकारों का स्वागत भी किया जाता है.
5: तो ये अभी तो मुंबई में है और हम 6 बस्तियों में जा रहे हैं अभी. बट एज एंड व्हेन हमें फंडिंग मिलती है उस बेसिस पे हम इसको एक्सपैंड करेंगे. अभी तो हमारे पास 600 बच्चे हैं और जैसे हम एक्सपैंड करते जाएंगे वैसे बच्चों मतलब ज्यादा बच्चे ले पाएंगे हम क्लासेस में. जी जी. चेंज ये है कि उनको एक खुशी मिलती है, एक उनको एक यू नो एक होप है कि आज हमारा क्लास होने वाला है. हमारे इमोशंस को फील कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं. घर पे जाके भी उनका टाइम अच्छी तरह स्पेंड होता है क्योंकि वो अपना म्यूजिक प्रैक्टिस करते हैं. और आई थिंक जो हमें फीडबैक मिली है पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं बिकॉज उनको एक डिसिप्लिन भी मिल जाता है कि स्कूल से आने के बाद उनके पास एक और चांस होता है कुछ अच्छा करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ. उनका टैलेंट को थोड़ा बढ़ावा भी मिलता है तो बच्चे काफी एंथुसियास्टिक और खुश लगते हैं.
4: अक्सर ये देखा गया है कि वंचित बच्चों में से ही कोई अपनी प्रतिभा के दम पर अलग पहचान बनाता है. ये अक्सर हमने रियलिटी टीवी शोज में देखा है. शायद ये संगीत वाली बस इसी की एक कड़ी साबित हो और कोई न कोई वंचित बच्चा फिर से अपनी प्रतिभा के दम पर दुनिया के सामने अपना नाम रोशन करे. लखनऊ से फैसल फरीद.
6: तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट कि किस तरह से दो बहनों ने बच्चों को संगीत की शिक्षा देने की शुरुआत की है. कोई भी शुरुआत किसी भी अच्छे काम के लिए हो अच्छा ही रहता है. अच्छा काम यानी रक्तदान. आपके संदेशों की मुझे प्रतीक्षा है. 04397997667 मिलती हूँ इस अंतराल के बाद.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies have rejected me.
10: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
8: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
12: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए. ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए. sbs.com.au/hindi पर जाएं. क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है.
6: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार. श्रोताओं, रक्तदान

बारे में मैं आपसे पूछ रही थी, तो हमारे श्रोताओं ने मुझे संदेश भेजे हैं, उनकी बात मैं आगे करती ही हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे कहा ही था कि आज सोचा कि 60 के दशक के कुछ गाने सुनते चलते हैं, क्योंकि 60 का दशक बॉलीवुड का कहा जाता है कि गोल्डन ईरा था। जैसे उन गानों के जो बोल थे, क्लासिकल धुन थी, और हमारे मशहूर गायक रफ़ी साहब और लता जी की बेहतरीन आवाज़, उन सब के साथ पहचाना जाता है। अब ये नहीं कि इनके अलावा दूसरे गायक नहीं थे, अगर सोचें तो 60 के दशक में वो गायक थे जिन्होंने उस दौर को सुनहरा बनाया। और वैसे उस दशक में शानदार ऑर्केस्ट्रा अरेंजमेंट के माध्यम से म्यूज़िक को भी एक अलग तरह से उसकी एक पहचान बनाई थी। पारंपरिक जो क्लासिकल राग थे उसमें थोड़ा सा वेस्टर्न चीज़ों का मिलान हुआ, जैसे कि वायलिन आया, एकॉर्डियन बजा, लैटिन रिदम के साथ आसानी से मिलके एक बड़ा ही शानदार सिनेमाई सा साउंड बनाया था उन्होंने। वो जो 50 के दशक में नहीं था, तो 60 के दशक में काफ़ी कुछ बदलाव आया। तो चलिए 60 के दशक का ये गाना सुनते चलते हैं और आगे बात करूँगी उन संदेशों की जो हमारे श्रोताओं ने हमें भेजे हैं।

श्रोताओं, रक्तदान की जब मैं बात कर रही थी तो हमारे श्रोता ब्रजेश जी ने संदेश भेजा है कि वो कई बार नियमित रूप से भारत में रक्तदान करते रहे हैं जब वो IIT रुड़की में थे, और इसके अलावा वो इससे काफ़ी अच्छी तरह से प्रभावित भी हैं, यानी उनका बहुत इच्छा होती है कि वो रक्तदान करें, और वो जानना चाहते हैं कि यहाँ यानी ऑस्ट्रेलिया में रक्तदान कैसे किया जा सकता है। तो ब्रजेश जी, आप किसी भी रेड क्रॉस शाखा से जुड़ सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में पता कर सकते हैं, और कई भारतीय मूल के संगठन भी समय समय पर इस तरह की ड्राइव करते हैं, तो आप कहीं भी जुड़ सकते हैं। और कल यानी 14 जून का दिन तो खास इस दिन को समर्पित है।

0: रक्तदान के लिए, तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर होगा अपनी उस नियमित रूप से जो आपकी आदत थी उसको वापस धर्म में लाने की। और हमारे श्रोता सुरेंद्र जी भी जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कई बार, 4-5 बार उन्होंने बताया है कि वो कई बार रक्तदान कर चुके हैं, और अभी वो जानना चाहते हैं कि उम्र के इस खास पड़ाव पर क्या वो रक्तदान कर सकते हैं। तो सुरेंद्र जी, उसके लिए यही कहूंगी कि आपके लिए सही सलाह तो वही दे सकते हैं ना जो ब्लड लेते हैं। तो आप उन शिविर्स पर जाइए और उनसे पूछिए, अगर आप स्वस्थ हैं और इस स्थिति में हैं कि आप रक्त दे सकते हैं, तो इससे बेहतर बात क्या होगी। उम्र की, मेरा ख्याल है, ऐसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, आप अपने डॉक्टर से और हॉस्पिटल से, जहाँ पर भी आप जाएं, उनसे पता लगा सकते हैं। और श्रोताओं, अगर आप नाटक देखना चाहते हैं मेलबर्न में अगले शनिवार यानी 20 जून को, नाट्य दर्पण की तरफ से नाटक है शादी सिलेबस, और दूसरा नाटक है दिस टाइम यू डिसाइड। 20 जून को चैंडर थिएटर में दोपहर 1 बजे से ये नाटक दोनों शुरू होंगे, एक सेशन में ही दोनों नाटक हैं। तो आपके पास अवसर है पास जीतने का, अपने संदेश भेजिए और लिख भेजिए कि आप क्यों देखना चाहेंगे नाटक, या नाटकों के प्रति क्या आपका रुझान है। और जब तक आपके संदेश आते हैं, चलिए चलते हैं बॉलीवुड की दुनिया में और वहां की खबरें जानते हैं।
1: SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम बॉलीवुड टाइम में आपका स्वागत है, मैं हूं नेहा। बॉलीवुड टाइम में सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान की। सलमान खान की अगली फिल्म को लेकर हलचल तेज हो गई है। नयनतारा के साथ उनकी पहली ऑन स्क्रीन जोड़ी वाली इस एक्शन थ्रिलर की शूटिंग अब मुंबई के बांद्रा इलाके में होने जा रही है, जहां सलमान और नयनतारा कई बड़े एक्शन सीक्वेंस फिल्माएंगे। फिल्म में चेज सीक्वेंस, व्हीकल बेस्ड स्टंट, क्लोज कॉम्बैक्ट फाइट्स और भीड़ के बीच फिल्माए जाने वाले हाई वोल्टेज एक्शन सीन्स शामिल हैं। मनाली के बाद मुंबई और फिर जुलाई में हैदराबाद में फिल्म का अगला बड़ा शेड्यूल रखा गया है। कर्नाटक संगीत की महान गायिका MS सुब्बू लक्ष्मी की जिंदगी पर एक बायोपिक फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना MS सुब्बू लक्ष्मी का किरदार निभा सकती है। फिल्म में मुख्य भूमिका कौन निभाएगा इसे लेकर अभी अलग अलग जानकारी आ रही है। रश्मिका मंदाना को MS सुब्बू लक्ष्मी की बायोपिक के लिए चुना गया है। हालांकि कुछ समय पहले ये जानकारी आई थी कि रश्मिका या साई पल्लवी की जगह रुक्मिणी वसंत को इस रोल के लिए साइन किया गया है, लेकिन सबसे पहले चर्चा थी कि साई पल्लवी ये किरदार निभाएंगी। बहरहाल फिल्म मेकर्स की तरफ से अभी तक किसी भी नाम पर आधिकारिक पुष्टि नहीं दी गई है। वो कौन थे फिल्म का गीत लग जा गले एक ऐसा गीत है जिसका जादू दशकों बाद भी बरकरार है। एक समय ऐसा था जब फिल्म के निर्माता राज खोसला को ये धुन बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। राज खोसला को लगा कि ये धुन फिल्म की जरूरत के मुताबिक प्रभावशाली नहीं है। मदन मोहन का मानना था कि ये धुन बेहद खास है और दर्शकों के दिलों तक जरूर पहुंचेगी। जब मदन मोहन ने दोबारा ये धुन गाकर सुनाई तो राज खोसला ने गीत की भावनात्मक गहराई और उसकी खूबसूरती को महसूस किया।
2: लग

बाद में FWICE ने हाल ही में रणवीर सिंह के खिलाफ दिए गए असहयोग निर्देश के फैसले को वापस ले लिया है। हालांकि रणवीर और FWICE के बीच कानूनी विवाद अभी भी जारी है, लेकिन इस बीच सिनेमा और टीवी कलाकार संघ की अध्यक्ष पूनम ढिल्लो से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि इस मामले में रणवीर सिंह सही थे, तो पूनम ढिल्लो ने कहा कि हमें इतना पता है कि वो एक निष्पक्ष इंसान है। वो ऐसे इंसान नहीं है जो जानबूझकर किसी को नुकसान या ठेस पहुंचाए। अगर किसी वजह से वो ये फिल्म करने में कंफर्टेबल नहीं थे तो उसके कई कारण हो सकते हैं। उन्होंने साइनिंग अमाउंट भी वापस कर दिया है, कई लोग ऐसा भी नहीं करते। मराठी फिल्म तिघी ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में दर्शकों का भरपूर प्यार हासिल किया। फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग हाउसफुल रही, जहां बड़ी संख्या में दर्शकों ने इसकी दमदार कहानी और प्रभावशाली अभिनय की सराहना की। फिल्म को फेस्टिवल में बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड भी मिला। फेस्टिवल में फिल्म का प्रतिनिधित्व अभिनेत्री निर्माता नेहा पेनसे और निर्देशक जीजी विशा काले ने किया। क्या आप जानते हैं कि सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम भी इंडस्ट्री के सबसे उम्दा सिंगर्स में से एक रहे हैं। 22 साल पहले अगम कुमार निगम ने एक ऐसा दर्द भरा गीत गाया था जो प्यार में ठोकर खाने वाले आशिकों के दिल की आवाज बना था। साल 2004 में अगम कुमार निगम की सोलो म्यूजिक एल्बम लॉन्च हुई थी, जिसका नाम बेवफाई था। उसमें से

करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित दोस्ताना 2 एक बार फिर अटक गई है, क्योंकि कास्टिंग के बाद अब फिल्म पर काम कर रहे निर्देशक अद्वैत चंदन ने इस प्रोजेक्ट से किनारा कर लिया है। अब निर्देशक के फिल्म से हट जाने से दोस्ताना 2 एक बार फिर अधर में लटक गई है। रिपोर्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि अद्वैत चंदन का प्रोजेक्ट से हटना फिल्म के निर्देशन को लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस से जुड़ा है। कॉकटेल 2 का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ और आते ही इसने ऐसा धमाका किया कि पूरी दुनिया इसकी चर्चा करने लगी। ये ट्रेलर पिछले कुछ सालों में किसी भी हिंदी फिल्म के सबसे टैग्ड ग्लोबल लॉन्च में से एक बनकर सिंगल है। यूट्यूब के मूवी ट्रेलर चार्ट में इसने 8 देशों में नंबर 1 की कुर्सी हथिया ली और साथ ही US टॉप 10 में भी अपनी जगह पक्की कर ली। ट्रेलर ने US के मूवी ट्रेलर चार्ट में टॉप 10 में भी एंट्री मार ली है। एक वक्त हुआ करता था कि सिनेमा जगत में म्यूजिक एल्बम की क्रांति देखने को मिलती थी। आज हम आपको सिंगर अल्ताफ राजा के एक 28

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: एक वक्त हुआ करता था कि सिनेमा जगत में म्यूजिक एल्बम की क्रांति देखने को मिलती थी। आज हम आपको सिंगर अल्ताफ राजा के एक 28 साल पुराने कल्ट सॉन्ग के बारे में बताने जा रहे हैं। तुम तो ठहर परदेसी, उसे 1998 में रिलीज किया गया था। अल्ताफ राजा की मधुर आवाज में तुम तो ठहर परदेसी गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि उस दौर में ये गीत हर जगह सुनाई देता था।

0: su SBS.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV. Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: नंबर वन स्थान पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अड़ीवी शेष ने एक बार फिर कंटेंट आधारित फिल्मों के भरोसेमंद अभिनेता के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। प्राइम वीडियो पर नंबर वन स्थान हासिल करने के बाद डकैत एक प्रेम कथा ने अड़ीवी शेष और मृणाल ठाकुर के करियर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ दी है। कल्पना कीजिए कि कोई गायक सुबह रिकॉर्डिंग स्टूडियो में प्रवेश करता है और रात जब बाहर निकलता है तो उसके नाम 21 पूरी तरह से रिकॉर्ड किए गए गाने होते हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि 8 फरवरी 1981 को बेंगलुरु में रचा गया एक ऐसा इतिहास है जिसे महान गायक SP बालासुब्रमण्यम ने सच कर दिखाया था। उन्होंने एक दिन में 19

0: su SBS.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV. Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7, except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that.
2: This, ya kisi bhi tarah ka aapko is tarah ki cheezein dikhai dengi aur hospitalon wagaira mein bhi aap jaakar raktdaan kar sakte hain. Aur श्रोताओं, आज एक खबर है ना कि एलन मस्क ट्रिलियनेयर बन गए हैं. तो देखिए, हम लोग बात करते हैं, लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, शायद खरबपति भी बन गए. तो ये कितने होते हैं हिंदी में, आपको मालूम है ना कि हिंदी में ट्रिलियनेयर को क्या कहा जाएगा? उसमें कितने लाख होंगे या कितने अरब होंगे, जरा मुझे बताइए तो सही. और आपसे मिलती हूँ, नहीं, आपसे मिलने से पहले क्यों ना एक गाना भी सुनते चलें. और गाना ऐसा कि अगर कहीं अंताक्षरी हो रही हो और अक्षर आए आप पर, तो कौन सा गाना सबसे ज्यादा याद आ जाता है एकदम से? यही.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of...
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
5: Appreciated. Part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies.
6: Press is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ अनीता बरार. श्रोताओं, इस अंतराल से पहले आपको गाना सुनवाना चाहती थी, वही गाना जब अंताक्षरी की बात कर रहे थे और आप पर गाना आ जाए तो एक गाना बहुत जल्दी से हमारी जुबान पर आ जाता है, तो आप सुन लेते हैं उसको.

फिल्म गाइड के बारे में। जी हाँ, गाइड अपने आप में एक अलग ही तरह की फिल्म थी, उसके बारे में जितना कहें शायद कम रहेगा। लेकिन मैं बात कर रही थी कि 60 के दशक में कुछ एक अलग बातें भी हो रही थी, जैसे कि पिक्चराइजेशन में जो था एक नया पन आ गया था। गाने के सीन सिर्फ एक कमर्शियल ब्रेक की तरह नहीं बल्कि कहानी कहने का जरूरी हिस्सा बन गए थे, जैसे कि गाइड। और इसी पे याद आता है डायरेक्टर विजय आनंद, जिन्होंने गाइड जैसी फिल्म बनाई थी और गानों को स्क्रीन पर शूट करने के तरीके में जैसे उन्होंने क्रांति ला दी थी। उन्होंने मुश्किल जगहों पर कैमरा डालना, आउटडोर लोकेशन और जबरदस्त कोरियोग्राफी का इस्तेमाल करके म्यूजिक को देखने में दिलचस्प बनाया। जैसे कि याद कीजिए ये गाना।

तो ये कहना था, क्या आपको ये फिल्म याद है, इसके कलाकार याद हैं? अगर याद हैं तो मुझे अवश्य लिखिएगा 0439-799-767। और आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेलबर्न में 20 जून को होने वाले नाटक के पासेस जीतना चाहते हैं तो बस आप मुझे संदेश भेजिए कि आप नाटक देखना क्यों पसंद करते हैं और क्या आपने कभी कोई नाटक देखा है उसके बारे में बताइए। और मैंने आपसे पूछा था लेकिन इस बारे में कोई जवाब नहीं आया कि ट्रेलेनेर यानी हिंदी में इसको क्या कहेंगे। ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं ये तो शायद आपको पता होगा, तो जरा जोड़ के बताइए कि कितने लाख हैं, कितने अरब हैं, क्या होगा, हिंदी में इसको कैसे कहेंगे। तो मैं आपके संदेश की प्रतीक्षा तो कर रही हूँ, जरूर बताइए। और हमारे श्रोता राजेंद्र वोहरा जी ने अपनी पसंद का एक गाना लिखा है, तो राजेंद्र जी कोशिश रहेगी कि अगले किसी कार्यक्रम में, अधिकतर शनिवार के कार्यक्रम में शामिल करने का पूरी कोशिश करूंगी। और अभी चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये गाना सुनते हैं। आपको इसके शायद कलाकार भी याद होंगे, किस कलाकार पर ये गाना फिल्माया गया हो और ये कौन सा दौर था वो भी आपको याद ही है, क्योंकि आज तो मैं 60 के दौर की बात कर रही हूँ। तो ये गाना

0: SBS.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
2: And staring.
1: That's motivation. Because he's in an RV covered by Geico. With RV specialists who are as passionate.
2: I'm on top of the world!
1: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: जीरो कितने होते हैं इसमें हमें ये सोचना पड़ेगा. अब मैं ऐसे ही देख रही थी ये 1,00,000 करोड़ होगा कि 10,00,000 करोड़ रुपए के बराबर होगा. ये कुछ सोचने वाली बात लगी है क्योंकि हिंदी में इसको 10 खरबपति भी कहा जाता है. तो जरा एक बार फिर से सोचिए कि ये 1,00,000 है या 10,00,000 है, खरबपति है या क्या है. खैर जीरो कितने होते हैं वो मुझे मालूम है कि इसमें 12 जीरो लगे हुए होते हैं. तो और हमारे और भी श्रोता हैं जिन्होंने अपने संदेश भेजे हैं. गाने को आगे बढ़ाती हूँ, ये वाला गाना भी सुनते चलते हैं.

श्रोताओं बताते चलूं कि जो गाना हमने आपको पहले सुनवाया था वो था फिल्म तेरे घर के सामने का, देवानंद और नूतन पर फिल्माया गया था और एक अलग ही तरह का उसका पिक्चराइजेशन था। आप सबको याद ही होगा कुतुब मीनार के अंदर इस गाने को फिल्माया गया था और अपने आप में एक मिसाल बना था। और इसके अलावा भी हमारे पास कुछ संदेश आए हैं, जो ड्रामे के लिए नाटक देखना चाहते हैं तो आप सब लोगों के नाम ड्रॉ में चले जाएंगे किसी भी लकी विनर के साथ में। कल आपसे संपर्क तो किया ही जाएगा और आपसे मुलाकात होगी अब आगे अगले सप्ताह में किसी भी कार्यक्रम में। तो संदेश मेरे पास आ रहे हैं लेकिन शायद समय नहीं रहा मेरे को बताने के लिए कि किन हमारे श्रोताओं के संदेश हैं। तो बस आप ये जानिए कि इस गाने से 60 और 70 के और 80 के दशक की जो हम यादें ताजा करते रहते हैं, करते रहिए। और आपसे मिलती हूँ अगले सप्ताह। अनीता बरार का नमस्कार। नया नया ये आशिकी का

जश्न के बांस की गुन गुनाऊं वो शर्म बिना, जश्न के बांस की गुन गुनाऊं वो शर्म बिना।